गुरबानी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, सब सिखन को हुक्म है

मन इश पाइए प्रभु त्याइए मिट है जम के त्रसा गोविंद गाया साधु संगाया पहि पूरन आसा तज मान मो विकार सगले प्रभु के मन पाइए बिनवंत नानक दिन सुरैनी सदा हर हर त्याइए।

0: वाहिगुरु
1: जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैमं गुर प्रसाद बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तक गुरु निस्तारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी डंडौत बंदन अनक वार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी विच समरथ गुरदेव चवरां तख्तां दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो के अमृत वेले तों इस वेले तक कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहिब जी पासों सरवण कीता। सतगुरु महाराज जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा

0: मन इस अड़ा फल पाइए राम।
1: आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमयी बाणी की लड़ीवार शब्द विचार का लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। पंचम पातशाह बाणी के बोहित शहीदां दे सरताज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी वल्लों वडहंस राग दे विच जो पावन शब्द उचारण किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी पवित्र अंग 578 दे उपर सुभाईमान है। इस पावन शब्द दे पहले दो पदियां दा पाठ उदी विचार कल दे दीवाना विच आप जी सरवण कर चुके हो। अगलेरे दो पदियां दी विचार नाल अज सतगुरु महाराज जी दी कृपा दे सदका जुड़न दा यतन करना है। गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करदे ने, आठ पहर हर तिहाई है राम, राम रमिया होया परमेश्वर अकाल पुरख, परमेश्वर दे हरि दे नाम नू अठे पहर तिहाउणा करो। अठे पहर दा मतलब है दिन रात, चार पहर दिन और चार पहर रात। अठ पहर दिन रात तो पावै लगातार, लगातार तो पाव हर सवास दे विच, क्योंकि सा लगातार चल रहे ने। शरीर भावें रुक जांदा है, ये भावें रात सौं जांदा है, पर सवास नहीं रुकदे, ये निरंतर चल रहे ने। हर सवास विच परमात्मा दे नाम नूं ध्याउणा करो। साडा ध्याउणा कुछ पल लई है, कुछ टाइम वास्ते है, मुड़ के फिर असी भुल जांदे आ, विसार दिन्ने आ, भुला दिन्ने आ। जां असी ये मन विच सोचिया कि सवेरे शाम कुछ टाइम वास्ते नाम ध्याउणा है, हर वेले नहीं। तो जे असी हर वेले नाम ध्यावांगे तो फिर असी काम धंधे किहड़े वेले करने आ, फिर असी परिवार संसार विच किवें विचरना है। महाराज जी सानू समझाउंदे आ कि तू अपनी किरत भी कर, परिवार समाज संसार दे विच भी विचर, तेरे अंदर निरंतर नाम चलदा रहना चाहिए। ये अवस्था असी बनाउनी है, जां इस अवस्था ते पहुँचना है। जिमें नामदेव जी भगत जी आखदे ने कि हाथ पाओ सब काम कर चीत निरंजन नाल, हत्थां पैरां नाल अपनी किरत करो, पर चित तुहाडा निरंकार नाल जुड़िया होना चाहिए, तुहाडे चित विच उहदा चेता होना चाहिए, उहदी याद। सिमरन दा अर्थ की हुंदा है? हर वेले उहनूं याद करना, हर वेले उहनूं सिमरना। महाराज कहिंदे जिहड़ा इस अवस्था दे विच कामयाब हो जाएगा, अठे पहर ध्यान दे विच, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझै चितारे, क्योंकि तन ने नहीं सिमरना, ये बॉडी ये शरीर ने नहीं सिमरना, मन ने सिमरना है। जिन्हें अठे पहर परमेश्वर दे नाम नू ध्यान विच सफलता हासिल कर ली, मन इच्छेड़ा फल पाई है राम। फिर उहदे मन दे विच जो इच्छा है उहनू फल लग जांदा है। जिवें पिछले शब्दां विच आपां पढ़ के आए हां, पूरी आसा जी मनसा मेरे राम। एक गल ध्यान च रखियो, मन विच ते माड़ियां विचारां भी हुंदियां ने, माड़े ख्याल भी हुंदे आ, माड़ियां मंगां भी हुंदियां, पर जदों असीं अठे पहर ध्यावांगे फिर मन दे विच शुद्धता आ जांदी है। मन विच शुद्धता आ जांदी है फिर मन माड़ा नहीं सोचदा, कोई माड़ी विचार मन विच माड़ा ख्याल नहीं आउंदा, इसलिए माड़ा सोचदा नहीं, माड़ा मंगदा नहीं। उहदे अंदर फिर जिहड़ी इच्छा हुंदी है वह मन की शुद्धता दे नाल हुंदी है, इसलिए उहदी इच्छा पूरी हो जाती है, उहनू फल लग जांदा है। कई ऐसे आ जिहड़े कहिंदे असीं अरदासां बहुत करदे हां पर रब जी साडी सुणदे नहीं, पर कई ऐसे आ जिहड़े कहिंदे असीं जो आखदे हां वो पूरा हो जांदा है, जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। वो अवस्था की है, आठ पहर हर तिहाइयै राम, अठे पहर उहनू तिहाउणा, उहनू सिमरना, फिर मन इच्छियाड़ा फल पाईऐ राम। गुरु महाराज जी कहिंदे ने फिर जो तुहाडे मन दी मुराद है, इच्छा है, उहनू फल जरूर लगेगा, लगदा है। सतगुरु महाराज जी समझाउंदे हन,
0: मन इस पाईऐ प्रभु तिहाइयै, मिट है जम के त्रासा।
1: साहब कहिंदे मन दी इच्छा भी पूरी हुंदी है और जम दा त्रास भी मिट जांदा है, मौत दा भय, जम्मण मरण दा डर इह भी नाल मिट जांदा है। हुण जदों अठे पहर धिआउणा है परमेश्वर नूं, फिर उत्थे मंग की हुंदी है, मंग हुंदी है परमेश्वर दे मिलाप दी। उत्थे भावना की बनती है, ये जन्म तुम्हारे लेखे, भी महाराज आ जन्म लेखे विच लग जाए, तो वह फिर महाराज कहिंदे मन इच्छ पाई है, उहदे मन की यह इच्छा भी पूरी हुंदी है। प्रभ तिहाई है, प्रभु नूं तिहाउंदिआं तिहाउंदिआं मिटै जम के त्रासा, जम मैने जम्मण मरण मौत, इहदा त्रास डर, इहदा जिहड़ा डर है वह भी मिट जांदा है। जदों परमेश्वर दे मिलाप दी इच्छा पूरी हुंदी है ते जिहड़ा जम्मण मरण ये मौत दा जिहड़ा भय ये भी अंदरों दी खत्म हो जांदा।

आनंद दे वाजे वजदे हन। सदा खेड़ा है, खुशी है, आनंद है। बिनवंत नानक गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे, मैं बेनती करदा जिहड़ा सुख तुहानू चाहीदा है वह सुख तुहानू नाम भगती विचों मिलना है, प्रेमा भगती चों। नाम दे नाल जुड़ जाओ, दिन रात नाम विचों गुण गाओ, भगती दा जाग लग गया तुहानू वह उत्तम सुख मिल जाएगा। सुख ना ही रहे हर भगत बिना, भगती तो बिना सुख नहीं है। मन दा अंदर दा सुकून नहीं मिलना भगती तो बिना, मन दी शांति नहीं मिलनी भगती तो बिना, नितनेम तो बिना, परमात्मा दे नाम तो बिना मन दी शांति, मन दा सुकून नहीं मिलना। जे असी चाहुंदे हां कि सानू उत्तम सुख प्राप्त हो जाए ते साडे दर ते वी अनहद नाद दे वाजे वजण, आनंद खेड़ा साडी जिंदगी विच आवे, तां महाराज कहिंदे सुख नाम भगती। सुख नाम दे विच है, उहदे लई तुहानू भरम मिटाउणा पएगा और मान मोह विकार दा त्याग करना पएगा, फिर ज्ञान लैके उहदे नाम दी कमाई करनी पएगी। भगती दे तीन अक्षर ने ना, भरम मिटाउणा पएगा और तत्ता त्याग दा मतलब है मान मोह विकार त्यागने पैणगे, फिर ज्ञान लैके उहदे नाम दी जदों कमाई करोगे ते भगती दा जाग लग जाएगा। इसे लई जिन्हों समझ आ गई वह फिर मंगदा भी यही है, फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तौ सरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। क्योंकि सुख इहदे विच है, मन दा सुकून, मन दी शांति, आत्मक आनंद केवल ते केवल नाम विच, प्रेमा भगती विच है। तो गुरु महाराज जी ने हर पदे दे विच बेनती कीती है। सतगुरु जी कादे लई कर रहे हैं, साढ़े भले वास्ते, साढ़े कल्याणता वास्ते, कि तुहानू ओ उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाए, तुहाडा जीवन आनंदमयी हो जाए। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इन्हां शब्दों दे विच किरपा करके सानू समझाउण दा यतन कीता है। ये लड़ीवार जो गुरबाणी विचार इस अस्थान दे उपर चल रही है, भाई साहब जी नूं बेनती करां एक बार फिर इस पंक्ति नूं दोहरा देण, फिर आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी वल आउणा। साहिब जी नूं वधाइयां अज आपां सारिआं ने रल के देणीआं ने। एक बार फिर इस पंक्ति नूं आपां पढ़ सुन के समझण दा यतन करिए।

राम से पौड़िया नंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा काटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे धरते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनिया यात्रावा सफल करनिया।

पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਗ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨ ਦੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋਂ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਹਿਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ
उड़े उड़ावे सैकों सां तिस बाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं सब त्यावहीं तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवहें जो सेवहें तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावहें हर त्यावहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तेना टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर निख अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तब तापहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुदे आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सवनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया
तुदे आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरिया ओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिल विछोड़या संयोगी मेल, जिसनों तू जान है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सर्वरड़े पाईरे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग रही चले, हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरना, जैना तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काय तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जाप ताप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो हो शर्मा, जाप ताप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कवि ओ वाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो, आप हाथ दें मोहे बचाबहो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबै रन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन शतर हमारे मारिए, आप हाथ दें मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रिया सुजो करिहो रक्षा, राख लियो मुहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो,
वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार हैं ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी दे कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के बड़ बड़ की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आ करख कर तुह कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जानत वेद भेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़े उचारत भेदा जाको पेवना पावत बेदा ताको कृपाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव ड्रंकार का चीनत नह पिव आब आपनी बुध है जीती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जेर से तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवै बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी श्रेष्ठ दखाए अचंभव आद जोगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वारिया सिख संघरो दुष्ट जिदे उठवा तो उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे आस्तुता विशरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो काल को इक बार ते है ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताही सब कल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल कृपा दृष्ट तन जाहे न हरिओ ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहा शवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर ठोर मो हो सहाई दुष्ट दुख दे ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे
लेहो ओबारी सरढ़ोर मोहो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ गए गए हो तोहारो द्वार बहें गे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छाड़ गए हो तोहारो द्वार बहें गे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरी केरा मान जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस दे हैं सो पावे सदा सिवत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुखोआ तेत घर अन हद बाजे हनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदामणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अधारो जेको खावे जेको पुंचै तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरी सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरेया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरेया वाहे गुरु जी का खालसा।

बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सुतनिक सेवा प्रवान करना जी। बख्शो शीस गज वज के फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सुहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती

जग तारण को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। दंडोत बंदन अनकबार, सर्ब कला समरथ,

पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीर्त की गुर रामदास राखो शरणाई। आसा महला चौथा संत कर

0: वार जिन मनस ते देवते के करत न लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगवै सूर्य चढ़े हजार एते चानण होंदे आ गुर बिन घोर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छोटे तलवार जो संजेंद्र खेत केते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सुहा।

0: करोड़ सच्चे सवतान सच सब जोर सच्चे तेरे सिफत सच्चे साला सच्चे तेरे कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तहन सच जो मर जमै सो कच ने कच महला पहला
1: वड़ी वड्याई जा वड्डा ना वड़ी वड्याई जा सच ने वड़ी वड्याई जाने चल थाओ वड़ी वड्याई जाने अला वड़ी वड्याई पूजा सब पाओ वड़ी वड्याई जा पुछना दात वड़ी वड्याई जा आपे आप नान कार न कथनी जाए किता करना सरबर जाए महला दूजा
0: एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समाए लेकिन

सिमरंग सोई पुरख अचल अवनासी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी। सतगुर चरण कमल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग। गुर रामदास कर कियो परगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो। भगत जोत को जैतवार हर जनक उपायो, शब्द गुरु परकाश्यो हर रसन वसायो। गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो। गुर अर्जुन कर गुर रामदास, भगत उतर आयो। बड़ पागी उन मान्यो, रिद शब्द बसायो। मन मानक संतोखियो, गुर नाम दृढ़ायो। अगम अगोचर पार ब्रह्म, सतगुर दर्शायो।

0: धर्म तुजा अर्जुन हर भगता।
1: त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारन, शब्द सार हर साम उधार अहमेव निवारन। महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे, सतवंत हर नाम मंत्र नव

जोग रस जानो, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो, अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो, गुर रामदास दर्शन परस कह।

गुर जोत अर्जुन महे तरी पै निरपौ माण्यो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सत गुर पर चायो गुर पर चै परवान राज मह जोग कमायो धन धन गुर धन अपर सर सुपर परायो गुर गम प्रमाण अजर जरयो सर संतोख समायो।

निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जानियो पयो तसम सर सोई, तरन गगन नवखंड में ज्योत

चंद जगत भयो आनंद तारन मनुखे जन कियो परगास गुर अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग।

0: तखत दियन गुर रामदास।
1: दृष्ट तरत तम हरन दहन अग पाप परनासन, शब्द सूर बलवंत काम यार क्रोध विनाशन, लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन, आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल ढालण, सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिर।

अस्थिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबरे कायनात रोशनी चराग, बार गाय नायत बेअंत भगतां दी चेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, चवर और तख्त दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जियां दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दी हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने सानू पावन हुक्म दी दात बख्शी है, सो पावन हुक्म सोरठ राग दे अंदर नौवें पातशाह वैराग दी मूरत धन धन श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जियां दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे अंदर 631 अते 632 अंग दे उपर सुभायमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राहीं ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ

0: योद महाबल सूर पहु जया वै जावत सगल्या पहु लिखिया सिरलेख नानक निरपहु निरंकार सच एक महला पहला।
1: नानक निरपहु निरंकार होर के ते राम रवाल के त्या कण कहानियां के ते बेद विचार के ते नचह मंगते गढ़ मुड़ पुरे ताल। बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले है आल पताल लख टक्यां के मुंदड़े लख टक्यां के हार जित तन पाये नानका से तन होवे शार। ज्ञान अगली टूंडी है कथना करड़ा सार कर मिलैता पाई है होर हिकमत हुक्म खवार पौड़ी।